0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो स्थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

पुराण ध्यान महायज्ञ में सादर निमंत्रणा। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा को आयोजना में धर्म जागरण पितृमोक्ष सत्संग भवन निर्माण र दैविक प्रकोप विपद कोष स्थापना को पावन उद्देश्य सहित श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ को भव्य आयोजना हुन गइरहेको छ। यस महायज्ञमा विशिष्ट वक्ता प्रमुख वाचक पण्डित श्री डिलीराम गौतमज्यूको मुखारविन्दबाट सुमधुर संगीतमय भजन कीर्तन र कथा प्रवचन श्रवण गरी तन मन र धनको पुण्य कमाउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्बत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार। सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्बत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार। समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 9852445779, 9849924909, 9844949913, 9141699945, 9844446550। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

Namaste. अरे अपनी फेरी आवेर भाई, मेरी प्यारी बुढ़ी, मेरी मुंह चुनकिरी, बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी रोले, मुंह बजे कुछ तो खत्म की बोले, तिल्ला जार दगर माचे राग, उसको मले हिला, ओ पुष्टिगा, मेरी बुढ़ी, बुढ़ी बंदे रिश्ते, ओ डार्लिंग, I love love I love you. My sato putla fly after see you. Angrezi bujhdina. Tale jehre sato putla urja bhanya ka.

0: नमस्कार
1: रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैलेमा थोप्लो साथमा गएरबाट म पति प्रसाद साहबकोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन् 2026 सेप्टेम्बर 29 तारीख आश्विन 13 गते मंगलबार तृतीया तिथि
0: अब स्तुति गरौं
2: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पे भरी

बाबा सारी छयान राजा नौशकाय सारी दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडाखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णय समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी हो सदवा तकै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान हो शिशु जनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित।